0: 从杨州年轻坑，我给了龙城个城中当军人年轻那三不的搞这些，我当地年轻个农村把当什么职吧，当成从某人呢？当地年轻人呢，参拜穷个女个女了，参拜东部聚会也习当，参拜你爸坚持么龙这人呢？
1: 兄弟，我求通的连村个参拜党部聚会也是个参拜党啊，啤酒也了。聚会起码从什么呢？从七十七等人派呀。聚会也是。
0: 阿里，当地聚会也是个参拜人啊！我去撮合我这个人，中肯，平海总嘛忙成肯个，成婚的肉吧，才让多接了个单证哎。三年门出个我们东南个哥哥那东个兄弟，聚会个证啊，卡达里聚会了，这个人个兄弟们呐。
2: 哦，对么？兄弟们，同志们，对么呢？
0: 对么人？阿里，对那，给那个托门，三年门出个我们东南个哥哥那东个兄弟。
2: 就会干这个也是的呢。哦呀呀呀，对对。嗯，他这东个就他，我就三年，但我就说说三年点存的钱呢。啊，蒙错个，我东顶个就近的东顶的呢，给他卡上对了呢，还叫蒙那个你听的没事。啊，对到呢，他对了用，就个林村这个，过去他来用，就你，啊，我东顶个兄弟，啊。 教会这个果子也是伟大的，马拉卡在这个农地水，但对当地教会这当个区域上面的那几个历史上有那个教会这个果子有，但是当农村人呢，我们去当个村的人，啊，三年个忙做的人，这个啊，我去我们村看到啊，因为这个大块个啊，块区个地方那个的年年子，你们在大果木村，接你们都去，果木村接你们都去那个不干呢，他肯定个的。
3: ロフチが来て、ロフチが来て、ゴルムとシェラって来て、ジーナンと来て、ロフチが来て、ゴルムとシェラマーシンズ。マーシンズ、ジーナンと来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチが来て、ロフチ
2: kirdiyo kata chi kabir lamni kabir donji nanda dintu chik damchin nanda kirji nanda dini xichigra mali ta mali nur jemisin kata shtakani ta chamukhon kata kachyo kutu kirgan da tondan jina ta gormu chi tani na mafchi nina makhi nukla na tundu mazkal kutak da tondan ta chokhe tongo ma chokhe niyamu chazin jina ya ngachun daga sani nanda ngis shonyo na tondo wain ngachun ganda naga ta mātukū kiri tīkitāna kirga chāhu gā tā dēwākshī māri tīkitāna kirga yāng chāhu gā chī tūkō tīmīz gā tā gōmu tā jīgsam tīmīz uchīs kīyā gōmu tā jīgsam tīmīz uchī nūs tākāni tā vijigni hāgī gōmu tērji māhūs gōmu tērji māyīla tīkitā nīgī wāni tā jī dālī shtākāni sōg chācik kīlā kā vijig dālī yā kātīgī sōg chācik kātā nī gōmu gā sāvī dālī sara dōmdān lūk sōchū yītīgī अरे ते ही तंता जीवनी ता सोकला कंदा निकायं ता चीन अंदर मारूं आता हाँ कि ता सोच गा निया कचाचे स्टेज जीवित है ता गुरु ठीचे धाम बातें हैं जिसकी जिसमें दिला ठीचिसमें दिन जिसकी ये जब ता तीला कंद तो मात्रा जीवनी में चु मामा चुंग का ना तगी यार यों मु जीवनी ता यहाँ बनी गया ta pancha ni dengang kotu kizi tona dengang kotu ichi meko mo ta niga ta koni ki tona ka ngakto ni ta tagi chi koni ga ka mo tagi kabda ita li tagi ak chichiga tagi shayo zi ta tagi shayachi mato uchi no dengang na kotu ichi me sos ne son ta jigni ta nga chubu ta nda chamran soki ta li tanki na si dengang laka ni jogo taga chik chamkong ga yang damdrik laka ni shala zi tagi yara suni sota goju laka ti chi sokcha zi kargi terju tagi jigni nūra nye kā sājili dhali dā gōndōndō tukkacā pāmari ya tukkacā tōndō tāi nāyā ngī tērāndō nī dā dāk sōgōndō shiā kōndō jīmsan chā sāngi dhila tukkā nī tukkacā tukkacā tukkacā nāyā dāndī nīgī